पैसे दे बोजी, हमें जाना है। दिया दिया, चलो चलो, चाय पी बोजी, अच्छा चाय पी बोजी, चाय पी बोजी, अच्छा चाय पी बोजी, चाय पी बोजी, अच्छा चाय पी बोजी।